होता है, और अभी तक अवलिशी जी 09238284495 एंड सलाम जी वालेकुम सलाम सिंह खी ठीक ठाक ये खैर खरीत जी तासो फल लवाई तासो खी ठीक ठाक ये खैरियत है खबर दा खैरियत है।

सलगे सलगे दिखनम आओ अरमान अरमान दिखनम लेवने मिनी सुमरा सुमरा ग्रांड दिखनम।

0: बिखरा है आशियां एक पल में, हमने बरसों में जो सजाया था। और ताहिर यहाँ ये बात भी कहना चाहेगा लिसनर्स के,
1: तकदीर को मना लेते,
0: अपना ख्याल रखा करें, ठीक है ना।
1: फिर से वीराने को,
0: हाजी रुस्तम मचे ना इसके अंदर मैसेज डाले मचे ना। ताहिर टपे प्रोग्राम के शामिल के, ताहिर एसएमएस जरूर प्रोग्राम के शामिल के जी। अमुंग आवाज कमदान डेर फमीना और सना का खेल मैसेज के, शुक्रिया सना।

असि मर जाएंगे फिर रोमी ना वही वही वही वही क्या कहने जी क्या बात है जी। और इसके साथ साथ लिसनर्स ये वाला ट्रैक प्रोग्राम में शामिल करते हैं, मैं कुछ थोड़ी सी बातें करना चाहूंगा यहाँ पे, कुछ थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगा लिसनर्स के, कभी कभी इंसान मोहब्बत को छोड़ता नहीं है, बस मोहब्बत के सामने हार मान लेता है और फिर एक दिन किसी के दिल में जो है ना एक चीज, ये यूं अगर मैं कहूं तो ये भी बुरा ना होगा कि कभी कभी इंसान मोहब्बत को छोड़ता नहीं है, बस मोहब्बत के सामने हार मान लेते हैं और फिर एक दिन दिल के किसी खामोश कोने में बैठकर खुश कहते हैं जा मोहब्बत तुझे अलविदा किया। ये याद रखिएगा लिसनर्स कि ये अलविदा कोई मामूली लफ्ज नहीं होता, ये उन तमाम ख्वाबों का जनाजा होता है जो कभी दो आंखों ने मिलकर देखे थे। ये उन वादों की आखिरी सांस होती है जो कभी पूरी जिंदगी साथ चलने के लिए किए गए थे। ये उन तमाम लम्हों का मातम होता है जिन्हें इंसान ने अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सरमाया समझकर संभाल कर रखा था।

याद रखिएगा लेसन्स के, मोहब्बत शायद जो है ना यही नाम है कि किसी एक शख्स की मौजूदगी पूरी दुनिया की कमी पूरी कर दे, उसकी एक मुस्कुराहट दिन रोशन कर दे, उसका एक पैगाम कई दिनों की उदासी खत्म कर दे, उसकी नाराजगी दिल पर बोझ बन जाने। और देखें देखें मैं यहाँ ताहिर ये बात कहना चाहेगा कि उसकी नाराजगी दिल पर बोझ बन जाए और उसकी खुशी या उसकी मतलब एक तरीके से अगर खामोशी के हवाले से बात की जाए तो खामोशी इंसान को अंदर तक तोड़ दे, फिर इंसान खुद से पूछता है कि आखिर एक इंसान एक शख्स इतना अहम कैसे हो गया। जवाब शायद जो है ना बहुत सादा होता है, मगर यहाँ ताहिर ये बात भी कहना चाहेगा कि क्योंकि जो है ना वो शख्स सिर्फ जिंदगी में शामिल नहीं हुआ था, वो जिंदगी का मतलब बन गया था।

अच्छा जी, मेरा यहाँ पे हेडफोन भी जो है ना खराब है, एक हेडफोन पे मुझे आवाज आ रही है और दूसरे पे नहीं आ रही, सो मिक्सिंग का उस तरीके से आप लोगों को मजा नहीं आएगा, मुझे भी मतलब उस तरह प्रॉपरली मजा नहीं आ रहा। बरगैफ फिर कभी जो है ना आप लोगों के लिए मिक्सिंग कर दी जाएगी। अच्छा जी, मैं क्या बात कर रहा था, कभी उसके साथ गुजारा हुआ एक मामूली सा लम्हा भी जो है ना बरसों बाद याद आए तो दिल उसी जगह वापस पहुंच जाता है। वो रास्ता, वो मौसम, वो शाम, वो बात, वो हंसी, वो नजरें, सब कुछ जैसे वक्त के किसी बंद संदूक में महफूज हों। और इंसान चाहे जितना भी आगे निकल जाए, कभी कभी जो है ना दिल उस संदूक को दोबारा खोल लेता है, फिर याद आता है कि कभी कोई था जो हमारी खामोशी भी समझता था, हमारी आवाज़ के पीछे दर्द भी पहचान लेता था, हमारे मैं ठीक हूँ में भी या इसके अंदर भी छुपी हुई टूट फूट सुन लेता था। और शायद सबसे ज़्यादा तकलीफ उस वक्त होती है ना जब मोहब्बत मौजूद हो मगर साथ ना हो, दिल में किसी के लिए बेशुमार दुआएं हो मगर जो है ना उसके करीब जाने का हक ना हो, उसका ख्याल हर रोज जो है ना आए मगर उससे बताने की इजाज़त ना हो, उसकी खुशी के लिए दुआ करे मगर जो है ना अपनी जिंदगी में उसकी जगह खाली रहे। इंसान मुस्कुराता है, लोगों में बैठता है, बातें करता है, जिंदगी गुजारता है, मगर दिल के अंदर एक कमरा ऐसा जरूर होता है जहां सिर्फ उसी शख्स की याद रहती है। और ताहिर यहां ये बात भी कहना चाहेगा लिसनर्स के, काश मोहब्बत हमेशा वैसी ही रहती जैसे पहली मुलाकात के दिन थी जी, ना कोई शिकायत, ना फासला, ना गलत फहमी, सिर्फ दो लोग और एक दूसरे की मौजूदगी। मगर जिंदगी हमेशा जो है ना हमारी मर्जी से नहीं चलती जी, कभी हालात मोहब्बत से बड़े हो जाते हैं, कभी फासले रिश्तों से बढ़ जाते हैं, कभी अना एक खूबसूरत तहल्लुक को तोड़ देती है, और कभी वक्त उन लोगों को जुदा कर देता है जो एक दूसरे से जुदा होना ही नहीं चाहते थे। और यहाँ ताहिर ये बात भी कहना चाहेगा लिसनर्स के, फिर एक दिन ऐसा भी आता है या इंसान को मतलब जाना ये सीखना पड़ता है कि हर मोहब्बत मिल जाना जरूरी नहीं है। हाय हाय, हर मोहब्बत का मिल जाना जरूरी नहीं है लिसनर्स। स्वीट लेसन्स, आप दोस्तों से मैं अभी इजाजत चाहता हूँ, आप दोस्तों से इजाजत चाहूंगा।

सो लिसनर्स, मैं कहना चाहूंगा आप दोस्तों से कि, और अब शायद आज की इस खूबसूरत मगर दर्द भरी महफिल को यहीं रोकने का वक्त आ गया है। दिल तो चाहता है कि बातें चलती रहें, आप सुनते रहें, हम कहते रहें और ये लम्हा कभी ख़त्म ना हो, मगर हर खूबसूरत मुलाकात की तरह आज की ये मुलाकात भी अपने अख्ताम की तरफ आन पहुंची है। और शायद यही जिंदगी है, कुछ लोग मिलते हैं, दिल में उतरते हैं, यादें बनाते हैं और फिर किसी मोड़ पर हमें अलविदा कहकर आगे बढ़ जाते हैं। मेरे प्यारे सामेन, अगर आज की किसी बात ने आपके दिल को छुआ है, अगर किसी जुमले ने आपको किसी अपने की याद दिलाई है, अगर किसी लम्हे आपकी आंख नम हुई है, तो उस आंसू को मत रोकिएगा। बस आंसू कमजोरी नहीं होते, ये उन जज्बात का सबूत होते हैं जिन्हें हम बरसों से अपने सीने में छुपा कर रखते हैं। कभी कभी आंखें वो कह देती हैं ना जो जुबान पूरी तरह नहीं कह पाती। और अगर इस वक्त आपके दिल में भी कोई ऐसा शख्स है जिससे बात नहीं हो रही, जिसे आप याद तो कर रहे हैं मगर आवाज नहीं दे सकते, जिसका नाम मोबाइल में नहीं मगर दिल में आज भी महफूज है, तो आज उसके लिए एक दुआ जरूर कीजिएगा। शायद मोहब्बत का आखिरी हक यही है कि हम उस शख्स की खुशी मांगे जिसे हम अपनी जिंदगी में ना रख सके। मैं नहीं जानता कि अगली मुलाकात तक आपकी जिंदगी में क्या बदल जाएगा। शायद जो है ना कोई नया दिन आपके लिए नई खुशी लेके आएगा, शायद जो है ना पुरानी नाराजगी खत्म हो जाएगी, शायद कोई बिछड़ा हुआ शख्स वापस आ जाएगा और शायद कुछ भी ना मिले या कुछ ना बदले। लेकिन एक चीज जरूर याद रखिएगा कि आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। ये सिर्फ आज की महफिल का अहतमाम है, आपकी कहानी का नहीं जी। मैं आप लोगों से इजाज़त जरूर ले रहा हूँ, यहाँ पे आप लोगों से रुख्सत जरूर हो रहा हूँ, मगर दिल से ये चाहता हूँ कि अगली मुलाकात तक आप अपने दिल का ख्याल रखें और लोगों की कदर करें जो आपके पास हैं, क्योंकि बाज़ लोग ये बाजू का जो है ना, बाज़ औकात हमें किसी कदर उस वक्त समझ आती है, उस वक्त हमारी समझ में आती है कि जब उसकी आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो चुकी हो। और हाँ, अगली मुलाकात का इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा, शायद अगली बार हम कोई ऐसी बात लेकर आएं जो आपके दिल के उस दरवाजे पर दस्तक दे जिसे आपने बहुत अरसे से बंद रखा है। शायद अगली महफिल में आप अपनी कोई ऐसी कहानी हमारे साथ बांट सकें जो आज तक सिर्फ आपकी आंखों ने पढ़ी है। तो आज के लिए उन तमाम दिलों के नाम जिन्होंने मोहब्बत की, उन आंखों के नाम जिन्होंने इंतजार किया, उन लोगों के नाम जिन्होंने मुस्कुराकर अपने आंसू छुपाए, उन मोहब्बतों के नाम जो मुकम्मल ना हो सकी, कभी मुकम्मल ना हो सकी मगर कभी खत्म भी नहीं हुई। मैं था आप लोगों का मेजबान ताहिर जमान और ये थी हमारी आज की मुलाकात। अब इजाज़त चाहूँगा इस वादे के साथ कि ये फासला हमेशा का नहीं है, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं, बस इतना कि जब अगली बार रेडियो दिलबर की आवाज़ आपके रेडियो से टकराए, ताहिर जमान की आवाज़ आपके रेडियो से टकराए, आपके लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाए और आप दिल में कहें हाँ यही वही आवाज़ है जिसका हमें इंतज़ार था, तब तक के लिए कुछ यादें अपने पास संभाल कर रखिएगा, कुछ दुआएं हमारे लिए, और अगर आंखों में आंसू आ गए हों तो उन्हें, इन आंसुओं को बह जाने दीजिएगा, क्योंकि कुछ आंसू रुकने के लिए नहीं होते, वो सिर्फ दिल का बोझ हल्का करने के लिए होते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और अगली मुलाकात तक रेडियो दिलबर FM 94 सवाबी को अपनी यादों में, ताहिर जमान को अपनी यादों में जरूर जिंदा रखिएगा। फिर मिलेंगे इसी मोहब्बत के साथ, इसी एहसास के साथ, शायद किसी नए किस्से के साथ, शायद जो है ना किसी नई कहानी के साथ। मगर एक बात हमेशा याद रखिएगा, कुछ आवाज़ें बंद हो जाती हैं मगर कुछ आवाज़ें दिल में रह जाती हैं। जहाँ रहेगा, जिधर रहेगा, खुश रहेगा, दिल भी पाकिस्तान, यानी कि हमेशा रहे पाकिस्तान। द अल्लाह पामान एंड आई लव यू ऑल।

0: back. Right after the commercial break.
1: जिंदगी एक खूबसूरत सफर है। जब इंसान तंदुरुस्त हो तो हर दिन नया लगता है, हर सांस ताजगी भरी महसूस होती है। लेकिन जब बीमारी जिस्म पर दस्तक दे तो मुस्कुराहटों के रंग भी मधम हो जाते हैं। ऐसे वक्त में जरूरत होती है एक ऐसे मरकज शिफा की, जहां दवा के साथ साथ दुआ का यकीन भी शामिल हो। और अब वही यकीन, वही उम्मीद आपके अपने शहर सवाबी में, जहांगीरा रोड शाह मंसूर बाबा मदरसा के करीब शाह मंसूर में मौजूद है। हैदर मोमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी, ये सिर्फ एक अस्पताल नहीं बल्कि इत्मीनान, भरोसे और शिफा की वो जगह है, जहां मरीज को फाइल नहीं एक इंसान समझा जाता है, जहां इलाज सिर्फ बीमारी का नहीं बल्कि इंसान के एहसासात का भी होता है। ज़ेरे निगरानी डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद, जो अपने तजर्बे, इल्म और खुलूस से हर मरीज के लिए शिफा का जरिया बने हुए हैं। उनके साथ मौजूद हैं हाई काबिल और महारत याफ्ता डॉक्टर्स की टीम, जो हर मरीज के इलाज को एक फर्ज, एक खिदमत और एक मिशन समझती है। चाहे मसला शुगर का हो या ब्लड प्रेशर का, मैदे के मसाइल हो या जोड़ों का दर्द, दमा, एलर्जी या सांस की दुश्वारी हो, खवातीन के अमराज या आसाबी थकन, हर बीमारी का कुदरती, महफूज और देरपा इलाज सिर्फ हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी में। यहाँ ना खतरनाक दवाएं, ना साइड इफेक्ट, बस खालिस होम्योपैथिक इलाज जो जिस्म के साथ दिल को भी सुकून देता है, क्योंकि यहाँ यकीन है कि शिफा दवा से नहीं दुआ से भी मिलती है। अपना अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए या बराहे रास्त डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद से राब्ता करने के लिए अभी कॉल करें 0331-939-4941। आपकी सेहत हमारा अज़्म, आपका एतमाद हमारी पहचान। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी, कुदरती शिफा दिल से दुआ, कुदरती शिफा दिल से दुआ।
0: हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर
2: सवाबी। जवानी द जवाना को न बगैर निमगिड़ी वो कुचर ता दग जवाना को पवख बानी गम उनक ले लेशी न प रारवान वक की दग जवाना की स्तासु द खाइस द खराबे दो बाइस जुड़ देशी द ऑयल स्किन और द दानो द पारा यो डियर खास मेडिकेटेड फार्मूला डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश, डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम तुम चिप सलूर सौ रुपए बाने द सलूर बेहतरीन इंग्रेडिएंट सर तैयार शुए। डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम, डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश तुम चिप द ऑयल स्किन और द एक्नी द पारा डेर बेहतरीन फार्मूला दा तुम चिप सलूर उरजु की सासु द स्किन एक्नी पिंपल प मुकम्मल तो गबाने खत्म ही और यवाज दाना द दग दानो चकम दागुन दी अग हम प मुकम्मल तो गबाने खत्म हीगी पदे के बेहतरीन एक्टिव इंग्रेडिएंट शामिल दी लका बेंजोइल परऑक्साइड सल्सिलिक एसिड टी ट्री ऑयल और क्लिंडा माइसिन कुमची यो डेर बेहतरीन एंटी बैक्टीरियल एंटी इंफ्लेमेटरी इंग्रेडिएंट्स दी और दग प्रोडक्ट्स डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड हम दी कुमच सिर्फ और सिर्फ पसलूर उस्पो की दनन दनन सासु दानी और दानू दागुना प मुकम्मल तो गबानी खत्म ही नो जर तरजरा द निजदी कॉस्मेटिक्स जनरल और मेडिकल सोरना द बेलाडोना कॉस्मेटिक्स डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम वाखली और द स्किन डेरे मसले अवारे कई द मजीद मालूमात द पारा जमुंग दगा वेबसाइट विजिट कई www.belladona.com

0: कॉस्मेटिक्स जनरल और मेडिकल स्टोर ना डेर पा आसानी सरा तरला सकोले शे या जमुंग वेबसाइट www.belladonna.com.pk विजिट करे समा सहर जुड़वी नोर खंदवर बेलाडोना गोल्ड अमनसी फार्मूला फेस वॉश तासो हम खपल सहर जमा परसान खंदवर जुड़ गई हागम द बेलाडोना गोल्ड फेस वॉश सरा और टूल और खपल मख द मुख्तलिफ किस्म मुजर असरातोना बचो साते
1: Belladonna, you are beautiful. Yes, you are Belladonna.
0: خلای آوازی خیستا مخنده اصلی خلا هغدا چه مخمو وزلیگی

0: Today's best music is here.
1: The Rhythm of the Valley. The new high.
2: 94 FM.
3: Music and information station.
1: 94
4: FM.
5: खुले आवाजों ना खुले सुरों ना
6: पता जहां खुले दे पता आसमान खुले दे
7: चुपता सो फरमाइशो ना
8: चुप चुप मिना पाटा तवा
5: नवी शायरी नवे अंदाज
9: मैं कसम खुलो छे दासे बदेर कड़मस लकच माचर तप उमर
5: नवे संदरगाड़ी नवे आवाजों ना
10: ستاسو خپل چینل ریڈیو